0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

0: रेडियो सुनो 91.7 FM, कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन।
1: आज प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील कर
2: टाइट वेरी टाइट